संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कबता बिद नाना कृष्ण जथा मत त्रित्रोचारो चूक होय कबल्यो सुधारो कबि बाच दोहरा जो निज प्रभु सो कहा सो कहु जग माहे जो तेह प्रभु को त्याए है अंत सुर को जाहि दोहरा हरु हर जन दोई एक है बेबिचार कठ नाही जल ते उपित रंग ज्यों जरही विकास समाज दोहरा

सर्वकर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं बाने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवार्षां दत्वा प्रसाद आदरूपनाद मूर्तजान प्रकृपा सर्व मान त्रिमान देव भेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन कालु जत्थर तत्र विराजे अवधूत रूप रसालु नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न वेख आदपुर का दान मरता जौन आद सेख दे से और न पहिजा कर रूप रेख न राग जत्थर तत्र दिशा विशाख फैल और राग नाम काम विहीन फेख स्तम न जाय सर्वमान सर्वत्र मान सदय मन ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अंत को फिर एक दीपे न जान ही जय वेद और कुतेब रूप रंग न जात पासो जान ही कह जेब तात्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिराय चत्र चक मान ही पुरती नौ लोक चौदह के बिखर जब जापे जह जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सब जिथाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व सब रचय सयम पहुगरण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देशो धर्म धाम सो परम रात भूतल आख पेश अंग राग रंग जाक जात पात ना नाम गर्भगंजन दस भंज मुक्त दाय काम आप रूप मीक अन उस्त प्रकूत गर्भ गंजन सरपंजन आदरूप सूत अंगहीन भंगनात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदेन भेख सर्वशास्त्र जानी ही जय रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जा कह नित भग नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवि बह चित मद पार छंद प्रसाद गुण गण उदर महमा पारासन भंग भगवान अंगर भव प्रकाश निस्त्र नास आदन बाहु साहु साहु राजन राजु पारन पान देवन देव मम हर इंद्र इंद्र बालन बाल रंग कर रंग काल काल अनभूत अंग भंग गत मित पारु गुण गण उदर मोन गण प्रणाम निरभय निकाम आत दुख प्रचंड मित गत अखंड आलिसा करम आदि सातर मसरबा पर लड़े अंडन बर डैंग चाचरी छंद तव प्रसाद गोबिंद मकंदे उदारी अपारी हरियं करी डंडामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सुत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म गजाय न चित्र न मित्र प्रिय पवित्र प्रतिश अधिश अदृश कृष भगवती छंद प्रसाद कस्ते के अचज दिशा के अपज पिसा के अभिज पिसा के अगंज कर्म के अपज भरम के अपिज लोक के अद्युत शोक के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभ के त्रमंग तुझ के अशोक वर्ण के सर्वा पर्ण के जगदम कृतिय के छत्रंग छत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपहनुप के आद अदेव के आप भेवे के छत्रंग विहीन के एकाधीन के रोजी रजा कर हिमा रिहा कर कपाक बेअब के गैपल कैब के आप लुगना के साहन साह के कारण कुनिंद के रोजी दहंद है के राज कर रही मह के कर्म क्री मै के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र जिसाई के सर्वत्र पेशाई के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजाई के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पुख के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
के सर्वं कलिम के परमंग फिम के अकुल अलाम के साहब कलाम के उसन वजू है तमाम रजू है हमेशर सलाम है सही खत बदाम है गनी बल शिकस्त है गरीब बल प्रस्ता है बिलांदल मकाना है दिमन और जमाना है ਤਮੀ ਜੋ ਤਮਾ ਮੈਂ ਰੁਜਵਰ ਨਦਾਨਾ ਹਰਿ ਪਰ ਜੀ ਮਰ ਜਾ ਕੁਛ ਕੀਨਾ ਨੇ ਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦੈ ਭੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਲ ਨਵਾਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਜੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭੇਦੀ ਰੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰੂ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਲੁਕਾਮ ਨਿਰਬਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਗਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਓ ਅੰਗ ਆਦਿ ਰੂਪੈ ਨਾ ਸੁਪੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੁਣ ਤ੍ਰਿਵਾਦੀ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ ਸੁਭੰ ਤ੍ਰਿਭਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬ ਰਾਗੇ ਤਿਰ ਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਛੇਜ ਹੈ ਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭੰਸ ਦੈਵੰ ਸਦੈ ਵੇ ਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵੇ ਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਇੰਚਾ ਤ੍ਰੀ ਛੰਦ ਭੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਭੇਖਾ ਲੀਖ ਹੈ ਭਰਮੈ ਕਰਮੈ ਅਨਾਦ ਜੁਗਾ ਦਿਆ ਜੈ ਹੈ ਬਹਿ ਹੈ ਭੂਤਿਆ ਧੂਤਿਆ ਅਨਾਸੇ ਦਾਸਿਆ ਧੋਦੇ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਭਗਤਿਆ ਮਰੁਕਤਿਆ ਅਨਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਚਿੰਤੇ ਅਸੁਨਿੰਤੇ ਅਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਭੀਖਿਆ ਢਾ ਹੈ ਗਾ ਹੈ ਸਭ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਜਾਤ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪੜ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵੰ ਹੰਤਾ ਸਰਵੰ ਗੰਤਾ ਸਰਵੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਵੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰ ਹਰਤਾ ਸਰਵੰ ਕਰਤਾ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਵੰ ਤ੍ਰਾਣ ਸਰਵੰ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰ ਧਰਮੰ ਸਰਵੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰ ਮੁਕਤਾ ਰਿਛਾਵਲ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾ ਸਿਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਵ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਦ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਭੰਗੀ ਰੂਪੇ ਨ ਪੁੱਤਰ ਨ ਪੁੱਤਰਿਆ ਨ ਸੁਤਰਾ ਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨ ਤਾਤ ਨ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤ ਨ ਸਾਕੁ ਸ੍ਰੀਕਾ ਮਿੱਤੋ ਮੀਕ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭ ਅਜਾਹ ਅਜਾਹ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗੇ ਕਿ ਕਾਬਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਲ ਹੈ ਗਰੀਮਲ ਕਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਨਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਬਲ ਸਕਨ ਹੈ ਰਾਸਲ ਪਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗੰਜਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇ ਕਰੀਮ ਹੈ ਸਮਸਲ ਜਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੂੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਤ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਲਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਰ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮ ਤਜੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸੈ ਸਮਸਤ ਅਧੀਸੈ ਅਦੇਸਰ ਲੇਖੈ ਮੇਸਰ ਭੇਖੈ ਜਿਮਨ ਜਵਾ ਹੈ ਅਮਿਕੁਲ ਅਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਕੁਮਾਲੇ ਕੇ ਜੁਰਤ ਜਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਪਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮਦਾਮ ਅਰਬਰ ਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਭੰਜ ਕਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਖਣ ਬਰ ਨਰ ਮੰਡ ਹਰ ਪਹੁਨਾਸ ਮੋਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮਦਾ ਮਨ ਛ ਜੰਗ ਅਸਨ ਭੰਗ ਮਪਾਰ ਗਾਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨ ਪਹੁਨਾਸ ਤ੍ਰਿਸ ਤਰ ਤ੍ਰਾਸ ਆਦਿਨ ਬਾਹੇ ਕਸ ਦਾਹ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਨਾਦ ਖਲਖਣ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਰਨਾਮ ਚੰਜ ਗਾਤ ਅਜਨ ਬਾਤ ਨ ਚੰਜ ਗਾਤ ਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਟੱਟ ਅਪਾਰ ਆ ਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फिर देह तरंगे।

बांस की ओ बिखयान सो बैठते हैं ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साथ कहो सुन ले उस सबै दिन प्रेम की उतने ही प्रपायो काहू ल पाहन पुत्र उसे रो काहू ल लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस नवायो को बतन कपूत है पासो को मृतान कपूजन तायो कुरकनिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतन कपूत है पासो को मृतान कपूजन तायो कुरकनिया उर्जो सब ही जग

पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान गुरु प्रतपारा हमरे दर्श सबत मुका हुआ भाद मोह बचावो हो सुखी बसै मोरो परवार सेवक सिख सब करता राव मोर छाण कर दय करिय सब बैरन को सिंगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा तुम है छाड़ो कोई अवरण त्याऊं जो भर जाऊ सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रासन भरिया ओ जो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तो जीव कर हो रक्षा राख ले हो मह राखन हारी साहिब सन साहे प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तम हो परिचातर दास कुंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल योगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हो मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतो जचन उपजायो आदंति कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुहबत कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंतर असूला सपर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट की पट पट की जाना जबद कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे पारा

भेद और आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ ताका मूढ़ उचारद भेदा जाको भिन्न पावद भेदा ताको कर पाहन अनमानत महा मूढ़ कच भेद न जान तो महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आपे अपनी बुद्ध जिती बरणत भिन्न भिन्न तोह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कहे बिदसजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज किनी ओत भुज खान बहर रत दीनी कहूँ पूर राजा हूँ बैठा कहूँ सिमट भय शंकर कैठा सिगरी सरण दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अवरचा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग हरो दोट जिते उठवत उत्पाताओ सकल मलेश करो रण काताओ जे अस तो जो तब सरणी परे

पई को कह जाओ पई संबत 17,000 जाए अर्धसहस गुण तीन कह जाए। भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गह जब ते तुमरे तब ते को आंकतरे नहीं आने ओ राम रही पुराण पुराण अनेक मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र भेद सबाई बो भेद कह हम एक न जाने ओ श्री अस्पन कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो बखाने ओ दोहरा।

जग जानत सुपना देहे न गेहे न नेहे न नीता माया मत कहां लो गारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बहती जात हृदय न विचारो रथ न अस न गज सिंघासन छिन्मय त्यागत न सिधारो

अंतर बार हो फिरा पीरते रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चित त्याया सतगुर सौ चित लाए तिन की दुख भुख हमें वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए गुण गावे गुण उचर गुण में समय समाए नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रभ आए माया मोह मनमुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूड़ कुमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार बिख माया तन संचमराय अंत होए सब विचार करम तरम संजम कराए अंतर लो विकार नानक मनमुख जे कुमावे सो थाई न पावे दुर्गवे खुवार सबना

शंख पाओ शंख पूजा शंख तपताओ शंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पहावा साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर

जुग जुगे को वेस। आसन लोए लोए पंडार, जो किछ पाया सो एक वार, कर कर वेख सिरजनहार।

ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गल्लां कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथा घड़ी है सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथा होर न कोई होर तिथा जोद महाबल सूरा तिन महराम रहया भरपूर तिथा सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जा।

दुख सब विसारना। अंगीकारो हुक करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो कर मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हार नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा।